0: लाइका गोल्ड। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
1: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
1: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
4: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
5: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: लाइका गोल्ड
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
1: High appreciation
2: In Dubai
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here Where's the taxi? I can't load the map
3: Relax, I've booked the Uber already
4: How? My roaming isn't even working yet
3: I switched to Simzy before we left London
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
3: T's and C's apply.
6: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कौन का

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

अनाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साफो ट्रेवल, auto protected.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल evening of timeless guzzles. The prince of guzzle, the youngest guzzle maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208-150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: When your husband's got his heart set on making the doer-upper open plan, enjoy every thudding second of it.
8: Yes!
7: Be a step ahead with Barclays Premier, with our exclusive mortgage rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. All mortgages are subject to application, financial circumstances and borrowing history. T's and C's apply. New Barclays mortgage applications only.
2: Across Greater London, this is Cardinal on Breakfast.

0: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम
2: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
3: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Himalaya Carpets ki dhadakti hui sale. Garmi se keemte pigalti hui sale. Room size agreements 30 pounds se shuru. Tamam roll stock par mark prices par 20% off. Laminate flooring from 9 pounds square meter. LVT flooring from 12 pounds a square meter. Rugs, beds, sofas, sab par 50% off. Carpets ki to ye sabse badi sale hai. Chupiye nahi. Visit himalayacarpets.com or come at Himalaya Carpets South Hall. Opposite the Ealing Hospital.
3: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
4: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
5: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
6: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
5: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
7: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: Cool music for a super hot summertime on Like a Gold.
9: Ek baat poochun.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel Auto Protected.
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
5: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
6: Hello London. The wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers. Also at Belgrave Road, Leicester.
7: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
0: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027 1.
2: Location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
6: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
7: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444.
8: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
9: बीकानेर वाला परंपरा भी,
10: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
11: 10 days to Turkey, guaranteed departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
12: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
13: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
14: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स.
13: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
15: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
16: Time for Listener of the Week.
17: Hi, my name is Sejal and I'm the Listener of the Week on Leica Gold. I love listening into the Gold Breakfast Show because it just takes me back to my childhood and happier times. Listen to my playlist from Monday to Friday only in the Gold Breakfast Show with Kajal on Leica Gold.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
2: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस होस्टेड बाय अनीसा नासिर। तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से।
3: शाम चलने लगे
2: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
4: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24.
7: Dreaming of paradise?
8: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
7: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
8: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
7: At all protected.

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
3: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
2: SonaTours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call SonaTours on 0208-951-0111.
4: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: आरडी बर्मन के म्यूजिक पर लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में था सागर फिल्म का ये गाना, और उससे पहले आपने सुना कभी कभी फिल्म का गीत। और लीजिए, दो गीतों के साथ आज के मनोरंजन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, जिसे आप सुनते हैं रवि शर्मा जी के साथ। लेकिन आज रवि जी की जगह ऋतु शर्मा आपका साथ देगी। 1 बजे तक यही रहूंगी और हमेशा की तरह सुनाऊंगी एक नहीं दो नहीं ढेर सारे क्लासिक्स। लेकिन सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और जहां कहीं भी आप हमें सुन रहे हैं, आपको बता दें कि ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। गुड मॉर्निंग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं अगर आज, तो 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128.3 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 a.m.

0: सऊदी अरब नागरिक परमाणु समझौते से पहले सऊदी अरब को इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना होगा। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
1: ये है Laika Gold Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: झुक गया आसमान फिल्म से सुनवाया हमने आपको ये गाना लता जी की आवाज़ में। और मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे बहुत सारे साथियों को ये चेक करना पड़ रहा होगा कि आज फ्राइडे है या सैटरडे।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: हमारी प्रज्ञा सोलंकी कहती हैं कि मुझे लगा आज सैटरडे है और मैं ओवर टाइम कर रही हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था। थैंक यू रंजन जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। अर्जुन जी थैंक यू, थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू राजेंद्र राज

0: जी थैंक यू बिजी गुनोबा जी, किरण जी हैरो से कहते हैं वेलकम बैक, व्हाट ए सरप्राइज। यस यस, कभी कभी तो सरप्राइज अच्छी लगती है ना। एंड थैंक यू जितने भी साथी हमारा साथ दे रहे हैं, बस देते रहिए, एक बजे तक ऋतु शर्मा आपके साथ यही रहेगी। और हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर। उनके पास दुबई जाने के लिए बड़ी अच्छी डील्स हैं, तो अपने टिकट्स बुक कराइए और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit travelhubworld.com.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930

0: मल्लिका याग्निक की आवाज में महेश भट्ट की फिल्म से था ये गाना, जिसमें म्यूजिक प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा जी का था और फिल्म का नाम था गुमराह। ये एक अच्छी फिल्म थी और ये फिल्म हमें कुछ सीख भी देती है। लेकिन ये फिल्म ज्यादा हिट नहीं हुई थी, 1993 में आई थी। इस फिल्म में श्रीदेवी थी, साथ में थे संजय दत्त। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये फिल्म, और अगर आपने नहीं देखी हो तो कभी देखिएगा। फिल्म अच्छी थी, गाने भी अच्छे थे, लेकिन कभी कभार पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ अच्छी फिल्में होती हैं जो हिट नहीं होती और कुछ फिल्में होती हैं जिनमें कुछ नहीं होता वो सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन मीना लगानी जी, थैंक यू, आपने कितने सुंदर रोज फ्लावर्स भेजे हैं और रोज देखकर तो दिल खुशी हो जाता है। क्या बात है, थैंक यू, साथ दे रही हैं। और हमारे राजेश जी कहते हैं कि अरे वाह, हाँ मुझे शुक्रवार को आपकी आवाज़ सुनकर आश्चर्य हुआ और मैंने खुद से पूछा कि क्या आज शनिवार है। मैंने कहा था ऐसा होता है अक्सर, और आप काम पर हैं और हमारा साथ भी दे रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हीता सोलंकी जी थैंक यू, रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, रजिंद्र राज जी थैंक यू, और जितने भी साथी जुड़े हैं साथ देते रहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में एक कॉम्पिटिशन भी है। जी हाँ, लास्ट एंड फाइनल आवर में हम कॉम्पिटिशन रन करेंगे और कॉम्पिटिशन बड़ा ही शानदार है, आपको कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। और वो क्या होगा उसके बारे में बात करूंगी मैं प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में, साथ देते रहिए।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए and 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 97.97 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold.
4: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
5: Goodbye.
4: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410। साफो ट्रेवल, at all protected.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
11: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
12: T's and C's apply.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग आफ्टर ब्रशिंग? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
6: London, good news! आपका favorite iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply। sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
14: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a gold.
15: Badan pe sitare lapete hue.

0: रफी साहब की आवाज में शम्मी कपूर पर पिक्चराइज ये गाना फिल्म प्रिंस से लिया था।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और लीजिए लता जी की आवाज में ये अगला गाना लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार चिंतन भी सुनेंगे और आपको कंपटीशन के बारे में भी बताऊंगे।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और 11:03 हुए हैं और ये समय हमेशा ही निर्धारित है चिंतन के लिए। चिंतन यानी कि आज का विचार। और आज के चिंतन में मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। देखिए, आजकल का जमाना बहुत बदल गया है, और ना सिर्फ जमाना बदला है बल्कि लोगों की सोच बदल गई है, लोगों का व्यवहार बदल गया है, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया है। पहले जमाने में और आज के जमाने में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है, और आजकल जो चीजें हो रही हैं उन्हें देखकर ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कैसे किसी गलत चीज को सही ठहरा दिया जाता है और किस तरह से गलत चीज को सही ठहरा दिया जाता है। और ये सब आजकल कितनी आसानी से हो जाता है और इसे कोई रोक भी नहीं पाता। और आपके देखते ही देखते अगर आपके बारे में किसी ने कुछ गलत को सही ठहरा दिया है तो आप उसे बदल भी नहीं सकते चाहे भी। तो जमाना इतना इस कदर बदल गया है। एक कहानी सुनाती हूँ आज भी, छोटी सी, आज के एक युवा लड़के की। एक युवा लड़का जो कि पेशे से एक ब्लॉगर और एक कंटेंट क्रिएटर था, उसकी पूरी जिंदगी इंस्टाग्राम यूट्यूब के लाइक्स व्यूज और जो फॉलोअर्स होते हैं उनके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। और उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी ट्रेंडिंग में आना। हर रोज नई नई चीजें पोस्ट करता और बस देखने में जुट जाता कितने व्यूज हुए, कितने लाइक्स मिले, कितने लोगों ने इसे रीशेयर किया, जैसा कि आजकल चलन है बिल्कुल वैसा ही वो युवा लड़का किया करता था। एक दिन वो अपनी नई कार से शहर के सबसे व्यस्त चौराहे से गुजर रहा था और तभी अचानक मौसम बिगड़ा, तेज बारिश होने लगी, और ऐसे में सामने से आती एक अनियंत्रित बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दूर जाकर गिरा और खून से लथपथ होकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, कोई मदद करो, मुझे बचाओ। उस युवा लड़के ने जल्दी से अपनी कार खोली, लेकिन जानते हैं क्या वो उसकी मदद के लिए दौड़ा? नहीं, उसने तुरंत अपना स्मार्टफोन निकाला, कैमरे का एंगल सेट किया और एक लाइव वीडियो चालू कर दिया। वो कैमरे में देखकर बोलने लगा, दोस्तों देखिए, लाइव एक्सीडेंट, क्या दर्दनाक मंजर है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा करने वाला वो लड़का अकेला नहीं था, देखते ही देखते चौराहे पर दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए। कोई उस तड़पते हुए इंसान का वीडियो बना रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, तो कोई सोशल मीडिया पर रील अपलोड करने में व्यस्त था। सबके पास स्मार्टफोन थे लेकिन किसी के भी पास इंसानी दिल नहीं था जो उस तड़पते व्यक्ति को उठाकर अस्पताल पहुंचा सके। और तभी भीड़ को चीरती हुई एक छोटी सी 10 साल की बच्ची आगे आई और उसने अपना स्कूल का बस्ता फेंका, अपनी छोटी सी फ्रॉक से उसने उस आदमी का खून पोंछने की कोशिश की और चीख चीख कर बोली, भैया अंकल, कोई गाड़ी निकालो ना, इन्हें अस्पताल ले चलो, नहीं तो ये मर जाएंगे। उस बच्ची की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर इंसानियत का दर्द। भीड़ में खड़े लोगों को एक पल के लिए लगा कि अरे ये बच्ची क्या कर रही है, वो एकदम सहम गए। उनके हाथों में पकड़े करोड़ों रुपए के कैमरे और टेक्नोलॉजी जो थी उस 10 साल की बच्ची की हमदर्दी के आगे बौने साबित हो रहे थे। किसी को आखिरकार शर्म आई और उसने अपनी टैक्सी रोकी। बच्ची की मदद से उस घायल इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कहा अगर इसे 10 मिनट पहले ले आते
तो शायद इनकी जान बच जाती। वो युवा लड़का जो लाइव वीडियो बना रहा था, उसने अपने फोन की तरफ देखा। उसके उस लाइव वीडियो पर लाखों व्यूज और हजारों शेयर्स आ चुके थे। कमेंट्स में लोग दुख जता रहे थे, लेकिन उस लड़के का जमीर अब जाग चुका था और उसे समय आया था कि व्यूज पाने के चक्कर में उसने एक इंसान की जान की बाजी लगा दी। और देखिए, इस छोटी सी कहानी से हमें समझ आता है कि आज हम क्या हो गए हैं, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम इंसानियत को भूल गए हैं? क्या वाकई में जमाना इतना बदल गया है?

0: 1954 में कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था ये गाना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और 1954 से लेके 2026 यानी कि 102 साल में, जब उस साल में जमाने की हालत ये थी जब ये गीत लिखा गया, तो आज क्या होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यानी कि आज का इंसान इतना बदल चुका है कि वो दूसरों के दुख और तड़प में भी अपना कंटेंट और अपना फ़ायदा तलाशने लगता है। हम इंसानों ने बहुत तरक्की की है, ऑब्वियसली 1954 से लेके अब तक बहुत बदलाव आए हैं, और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो उस समय जन्मे हैं, उन्होंने तो शायद सबसे ज़्यादा बदलाव देखे होंगे। टेक्निक ने हमें जोड़ा तो सही है, लेकिन सच कहा है किसी ने, दिलों को मीलों दूर कर दिया है। जो लोगों में पहले एक मिलने की ललक होती थी वो आजकल कम हो गई है। अरे व्हाट्सअप कर लेंगे ना, व्हाट्सअप पे बात हो जाएगी ना। हाँ, आसानी हो गई है, पहले एक दूसरे को देखने में बहुत तड़प हुआ करती थी, बहुत समय, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, आजकल खुद देख सकते हैं। लेकिन मिलकर खुद को गले लगाने का जो अनुभव होता है वो आजकल हमें नहीं मिल पाता। हाथ में सबके आधुनिक गैजेट्स हैं, लेकिन सीने में पत्थर का दिल। और समाज में संवेदनशीलता घट रही है और दिखावा बढ़ रहा है। और इस गीत को सुनकर मुझे लग रहा था कि कवि प्रदीप, जो कि इस तरह की ही इंस्पिरेशनल वर्सेस लिखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने क्या सटीक, क्या खूबसूरत गाना लिखा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चंदा ना बदला, बदला ना ये आसमान, लेकिन इंसान बदल गया। यही था आज का चिंतन, और हमारे बहुत सारे साथियों ने आज के चिंतन को पसंद किया है। थैंक यू संध्या बावसर जी, थैंक यू हिना जी, कहती हैं टचिंग भी था और बिल्कुल सत्य वचन आपने कहे। थैंक यू रानी जी, बिल्कुल सबका मानना यही है। और ये मैक मारू महिंद्रा जी, आपका मैसेज मिला है, कहते हैं वाह वाह ऋतु, टुडेज जनरेशन शुड लर्न। यस, ये जो चिंतन होता है इसमें बहुत सारी सीखने वाली बातें होती हैं। ज़रूर अपने बच्चों को सुनाया कीजिए, अगर उन्हें हिंदी समझ नहीं आती तो उसे ट्रांसलेट करके सुनाइए, और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, मैं ज़रूर सुनती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी बातें आप अपने जीवन में ढालें या ना ढालें, लेकिन सुनने से आपको उस समय के लिए ही सही, कम से कम थोड़ा सा तो बदलाव महसूस होगा। कम से कम कुछ गलत काम करने से पहले एक पल के लिए तो आपके मन में ये विचार आएगा कि कहीं मैं ये गलत तो नहीं कर रहा, कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा मुझसे। और ये जो डर है ना इंसान में, ये रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद ये डर इंसान को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू हिना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी यही कहना है कि चिंतन वॉज हार्ट टचिंग। थैंक यू मंजू काम्बी जी, थैंक यू फरीदा जी, कहती हैं चिंतन सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और हम एक जानवर को भी तड़पते हुए नहीं देख सकते हैं, कोई कैसे एक इंसान को मरने के लिए छोड़ सकता है। लेकिन फरीदा जी, आजकल ऐसा होता है, हम खबरों में सुनते नहीं हैं, कितनी सारी बातें रोज खबरों में सुनाई जाती हैं, न्यूज़ में होती हैं, उनका जिक्र यहाँ तो नहीं करूँगी लेकिन आप सब जानते हैं। थैंक यू सुरेश टकियार जी, अर्जुन जी, थैंक यू गिरीश जी भारत से, थैंक यू फतेह पटेल जी, हरविंदर जी, जैस्मीन, जितने भी साथी, आप सबको जो चिंतन पसंद आता है सभी का धन्यवाद। यही था आज का चिंतन, जिसे आप हर रोज सुनते हैं मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद। चलिए समेटते हैं अब चिंतन को, और आपको याद दिलाते हैं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन क्या है बताऊंगी ना अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आज देगा आपको 128.3 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.

छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, क्या लिरिक्स लिखे हैं अनजान ने और उस पर क्या धुन बिठाई है राजेश रोशन ने। एक अमर गाना बना दिया है किशोर कुमार की आवाज में, ब्यूटीफुल गीत, हम सभी का फेवरेट। एंड थैंक यू दिनेश पोपट जी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, आपको चिंतन भी पसंद आया। एंड स्वागत है आपका इस शो में। एंड प्रकाश चथार जी नॉर्थ होल्ड में हमें सुन रहे हैं, कहते हैं ऋतु कैसी हो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आप शो को एंजॉय कर रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं, स्वागत है आपका भी प्रकाश जी इस शो में। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ बिल्कुल आपके फायदे की है, अगर आप गजल्स पसंद करते हैं, लाइव शो पसंद करते हैं, तो यकीन मानिए ये कंपटीशन बिल्कुल आप ही के लिए है जो होगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन क्या है। लाइका रेडियो नेटवर्क, सिफत इवेंट्स और सोल जैम लंदन के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं अ नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा। और ये होने जा रहा है एट हैरो आर्ट सेंटर ऑन थर्सडे 30th July एट 7 PM। आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी प्रोग्राम के नेक्स्ट वाले आवर में। लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि अगर आज आप कंपटीशन नहीं जीत पाते हैं तो फिकर नॉट, आप टिकट परचेज कर सकते हैं फ्रॉम hairoarts.com पर जाकर। टिकट्स की जो प्राइस हैं वो £25 हैं और अगर आप लाइका रेडियो कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10%

0: मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में था ये गाना फिल्म ससुराल से। और अब इस गाने के बाद आपको एक और ख़ास इन्फॉर्मेशन दे दें। और ये इन्फॉर्मेशन है कि लाइका रेडियो नेटवर्क एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं दिवाली स्टोरी के, द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल एल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव्स एट ओवो वैम्बली अरीना ऑन संडे 27th September। और ये एक स्टूडेंट प्री शो है जो होने जा रहा है फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। इसे क्रिएट किया है सनातन इवेंट्स फाउंडर नितिन पालन MBE ने एंड फीचरिंग कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं आपके लिए रामायण टू लाइफ विद 4 chapters, ए बेस्पोक 7-song soundtrack एंड ए फुल इंटरनेशनल कास्ट। टिकट्स अवेलेबल है www.diwalistory.com पर।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग, डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड 0 प्रिजर्वेटिव्स। विजिट derivalley.net।

0: लीजिए, ये थी अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद मिलिंद का म्यूजिक, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। कुली नंबर वन फिल्म से लिया था ये गाना। संध्या भावसर कहती है कि भेल पूरी खाने के लिए तो इंडिया जाना पड़ेगा। अरे क्या बात करती हो संध्या भावसर, आजकल यहाँ पर भी बहुत बढ़िया भेल पूरी मिलती है। हमारे यहाँ से इतने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं चीज़ों के, कहीं भी चले जाइए आपको स्वादिष्ट भेल पूरी यहीं खाने को मिल जाएगी।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Gold.
1: Leica Extra Podcast Update.
0: तो आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इस बार का टॉपिक है लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर, और जिसमें हमारे बहुत सारे प्रेजेंटर्स ने अपने अपने व्यूज दिए हैं। आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल और अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
6: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट travelhubworld.com।
9: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
10: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
9: सच?
10: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
11: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड गैंसिल इलफोर्ड IG2 6HA। कॉल करे 07555-506-015। बीकानेर वाला, Taste of India now in Ilford.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: Are we there yet?
15: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
16: Relax, I've booked the Uber already.
15: But how? My roaming isn't even working yet.
16: I switched to Simzy before we left London.
15: Simzy? Since when are you the tech expert?
16: Since I decided I want a stress-free holiday.
17: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
18: T's and C's apply.
19: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
20: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
19: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
20: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923-227274। बुक योर टेबल टुडे।
21: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
22: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
8: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pyar, ho jaye happy soul.
14: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
8: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan. Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
23: Sounding better than ever in the sunshine. This is Like a Gold.

0: फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए और 164 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
5: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: The Gold Rate is 98.01 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
6: Leica Gold.
7: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
8: Goodbye.
7: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
9: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday, the 26th of July at St. James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
11: Dad, Dad, Dad!
12: What's wrong, beta?
11: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
12: I will run down to the money exchange now.
11: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
12: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
11: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
13: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 आवर लाइन।
14: हिमालय कारपेट्स की धधकती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज रेमिनेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट हिमालय कारपेट्स.com और कम एट हिमालय कारपेट्स साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: Mum always said, Beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
5: SonaTours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call SonaTours on 0208-951-0111.
6: This is Leica.
7: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: लता जी और विनोद राठौर की आवाजों में चांदनी फिल्म का था ये गाना शिव हरी का म्यूजिक, जिसे आपने अभी सुना आपके मनपसंद रेडियो से, जो है लाइका गोल्डन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां पर ऋतु शर्मा हाजिर है आपका साथ देने के लिए रवि शर्मा जी के मनोरंजन शो में, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में हम एक कॉम्पिटिशन रन करेंगे, तो बिल्कुल समय आ गया है आपको बताने के लिए कॉम्पिटिशन के बारे में। लेकिन उससे पहले थैंक यू नरेंद्र पांचाल जी, हैप्पी फ्राइडे टू यू टू, और हैव ए नाइस वीकेंड, साथ दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद। एंड विजय गुनोवा जी हमारे मॉरिशस गए थे, जो लंदन लौट कर आए हैं, और आई एम श्योर आपने वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम बिताया होगा, और अब आप आ गए हैं और आप हमारा साथ देते हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, तो आपको यही कहूँगी कि वेलकम बैक, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। एंड रक्षा पटेल, आप प्रोग्राम सुन रही हैं, आपको चिंतन अच्छा लगा, थैंक यू साथ देने के लिए। एंड अरुणा जी स्वागत है, तोची जी आपका भी स्वागत है, एंड थैंक यू सभी लिसनर्स जो का जहां भी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है शो में। एंड आई एम श्योर आप सब तैयार हैं जानने के लिए कि आज का कॉम्पिटिशन क्या है। तो आपको बता दें कि अगर आप गजल्स के शौकीन हैं और लाइव म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो ये आपके लिए ही है। लाइका रेडियो नेटवर्क, सिफत इवेंट्स एंड सोल जैम लंदन के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं ए नाइट ऑफ डिवाइन सोलफुल म्यूजिक विद प्रिंस ऑफ गजल्स रंजीत रजवाड़ा। और ये प्रोग्राम होने जा रहा है हैरो आर्ट्स सेंटर ऑन थर्सडे 30 जुलाई एट 7 PM। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वर्ड गज़ल लिखना है, गज़ल लिखिए और भेज दीजिए इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और व्हाट्सएप नंबर क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। तो आप गज़ल लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, और साथ में अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट लिखिए, क्योंकि टिकट्स आपको ईमेल पर ही भेजे जाएंगे। और अगर आप कंपटीशन नहीं जीत पाते हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप टिकट्स खरीद भी सकते हैं, और टिकट्स आपको मिलेंगे फ्रॉम herroarts.com पर जाकर। टिकट्स की प्राइस है, स्टार्ट होती है, टिकट्स की प्राइस है 25 pounds, और जब आप लाइका रेडियो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा टिकट्स पर ऑनलाइन। और बस टिकट्स मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन भेजे जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई है, ईमेल के थ्रू आपको भेजे जाएंगे। तो बस देर किस बात की है, फटाफट अपना नाम सबसे पहले लिखिए, गज़ल अपना नाम लिखिए, अपना टेलीफोन नंबर लिखिए और अपना ईमेल एड्रेस लिखकर भेज दीजिए हमारे इस नंबर पर। इस वाले आवर के एंड में मैं बताऊंगी कि कौन है वो लकी विनर जो रंजीत रजवाड़ा को सुनने जा रहे हैं एट हैरो आर्ट सेंटर ऑन थर्सडे 30 जुलाई एट 7 PM।
1: WhatsApp message Leica Gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128.3 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold.

0: आरडी बर्मन के म्यूजिक पर महबूबा फिल्म से गाना था, जिसमें राजेश खन्ना के साथ हेमा मालिनी ने काम किया था। और इस बार की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हेमा मालिनी ही है।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

हेमंत कुमार के म्यूजिक पर, हेमंत कुमार की आवाज में अपने जमाने का सदाबहार गाना आपने सुना, लाइका रेडियो, लाइका रेडियो मिडलैंड्स और लाइका गोल्ड रेडियो, जिसे आप सुनते हैं ग्रेटर लंदन में। और इस शो में ऋतु शर्मा आपके साथ है। आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं। निर्मल एंड किरीट जी, थैंक यू, कहते हैं वेरी गुड आफ्टरनून ऋतु, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज टू हियर यू। और आपने ये भी लिखा है कि आई मिस्ड 2 आवर्स प्लस ऑफ क्वालिटी गुड सॉन्ग्स, क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। अब आपने मिस तो किया है, लेकिन अब जितना समय बचा है उतना साथ दीजिए, आपका शो में स्वागत है। थैंक यू संध्या भाव सर। और कंपटीशन भी चल रहा है, बहुत सारे आंसर्स मिले हैं और देखते हैं, आंसर्स तो नहीं है, मैंने सवाल नहीं पूछा था, एंट्रीज मिली हैं, तो देखते हैं कि कौन बनते

0: स्टेज म्यूजिकल देखना पसंद करते हैं तो आप देखने जा सकते हैं सुरेंद्रेला rifcotheater.com पर आपको विजिट करना होगा टिकट्स बुक कराने के लिए. इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो और ये आज आप इसे देख सकते हैं दिस जुलाई. टिकट्स और नियरेस्ट वेन्यू के लिए मैंने आपको फिर से याद दिलाना है कि विजिट कीजिए rifcotheater.com पर.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: और अब हेमंत कुमार की आवाज के बाद मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ शैलेंद्र सिंह की आवाज.
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

लीजिए, शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गाना दिव्या जी आपको डेडिकेट करते हैं। आपको ये गाना अच्छा लगा और आप में से बहुत सारे साथी कुछ देर पहले ही जुड़े हैं और कह रहे हैं कि अरे हमें पता ही नहीं था कि आज आप होशो में। एनीवेज कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पे समय है तो आप लिसन बैक पर जाकर भी गीतों को सुन सकते हैं, वरना हमारे यहाँ से तो 24/7 क्लासिक्स आपको सुनवाए ही जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी, इनफैक्ट एक गाना और बजाऊंगी उसके बाद बताऊंगी कि आज के कंपटीशन के विनर कौन बने हैं। लेकिन उससे पहले याद

0: इरादे की हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो आप दुबई जा सकते हैं, क्योंकि अब दुबई से जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। आप साउथ होल ट्रैवल को फ़ोन कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर और अपने हॉलीडेज बुक कराइए। सभी कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Ye hai like a gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208-706-0915 for a free, no-obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages. The broker that gives you back.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
8: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
7: So where do we find something like that now?
8: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic Premium and made the way our eldest used it.
9: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
10: Honslow, ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
11: Bikaner wala parampara bhi swad bhi.
12: Bikaner wala mein enjoy kijiye famous chole bhature, raj kachori, mithai aur bahut kuch. Aaj hi aaiye 101-105 High Street, Honslow, TW3 1QT. Call kare 0748768785.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
14: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
1: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन।
16: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: यस लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में था ये गाना। और अब समय आ गया है कि मैं आपको बता दूं आज के कंपटीशन के विनर आखिर कौन है।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: तो भाई ये कंपटीशन हो रहा था किस बारे में, ये गज़ल का प्रोग्राम होने जा रहा है जिसे आपके लिए लाए हैं सिफत इवेंट्स एंड सोल जैम लंदन। और इसमें परफॉर्म करने वाले हैं रंजीत रजवाड़ा, प्रिंस ऑफ गज़ल्स। और ये शो है थर्सडे 30th जुलाई को एट 7 PM एट हैरो आर्ट सेंटर में। और अगर आप नहीं जीते हैं आज के शो में दो मुफ्त के टिकट्स, दैन आप टिकट्स बुक करा सकते हैं। £25 टिकट प्राइस है। अगर आप लाइका रेडियो कोड यूज़ करते हैं तो आपको अपने टिकट्स पर 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है जब आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कराते हैं। और अगर जो विनर बनते हैं उन्हें टिकट्स ईमेल किए जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहेंगी। और जिन्होंने आज का कंपटीशन जीता है उनका नाम है शुमिला मंगर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं इस शो के दो टिकट्स और ये टिकट्स आपको ईमेल के थ्रू मिलेंगे। और जो नहीं जीते हैं वो हमारा साथ देते रहिए, हमारे यहाँ और भी शोज़ हैं जिसमें कॉम्पिटिशन्स होंगे तो हो सकता है आप उसमें उन्हें आपको टिकट्स जीतने का मौका मिल जाए। तो मैंने कंग्रेचुलेशंस शुमिला मंगर, आप बनी हैं आज के इस कॉम्पिटिशन की विनर।
1: मनोरंजन विथ रवि शर्मा। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 के बदले में आज आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold rate is £97.9 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: यस अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना आपने सुना और अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार बाली ब्रह्म भट्ट आपका साथ देंगे, लेकिन मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच शो में मेरा साथ देने के लिए। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साफो ट्रेवल, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: What food make dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
7: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
6: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
7: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271। हिमालय कारपेट धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट हिमालय कारपेट्स.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।

0: That's right. We are remembering Hari Krishan Giri Goswami. Kise nahi malum Manoj Kumar ka naam. Manoj Kumar ji was born on 24th of July 1937. Aur dekha jaye to maine jab फ़ोन किया मेरे दोस्तों को वहाँ बॉलीवुड में मुंबई में और उनके बेटे कुणाल, उन्होंने कहा सब न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स टेलीविजन्स दे आर ऑल फिल्ड विद द नेम ऑफ मनोज कुमार टुडे, दे आर रिमेम्बरिंग हिम ऑन हिज 89th बर्थ एनिवर्सरी। और मैं जब पूछता हूँ कि कुछ ऐसी बातें मुझसे कहो जो थोड़ी सी अलग हो फ्रॉम द यूजुअल बेंटर, कहाँ जन्मे थे, और ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज एबटाबाद एंड कैसे इन्होंने अपना नाम चेंज किया वो सब सबको मालूम है। फिल्म शबनम उन्होंने देखी, 1949 की फिल्म जहाँ दिलीप कुमार साहब का नाम था उसमें मनोज, तो उन्होंने उनका नाम चेंज करके उन्होंने मनोज कुमार रख लिया। बीए की डिग्री हासिल की वो भी सबको मालूम होता है। एंड 10 साल की उम्र में जब पार्टीशन हुआ तब मैनी अ टाइम्स आई से दिस, व्हेन देयर इज पार्टीशन देन पीपल मूव आउट एंड गो टूवर्ड्स दिल्ली और बॉम्बे और वेयर एवर, बट दे क्रॉस द बॉर्डर। एंड इनके 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स beautifully in 55 films. और films कैसी, जैसे कि इन्होंने लोग समझते थे कि बस ये इनका दूसरा नाम है भारत कुमार और ये patriotic films करते हैं, लेकिन इन्होंने जितनी films as a normal actor जो की थी they were amazing. मुझे बड़ा मज़ा आता है कि फर्स्ट आवर में मैं उनकी प्रोडक्शन के गाने मैं सुना रहा हूँ, कुछ पेट्रियोटिक गाने सुना रहा हूँ, एंड देन इन द सेकेंड आवर विल डू द कमर्शियल फिल्म्स ऑफ मनोज कुमार, जैसे कि हरियाली और रास्ता, डॉक्टर विद्या, गुमनाम, वो कौन थी, सावन की घटा, बेईमान, ये सब फिल्मों के गाने जो हैं वो मैं आपको सुनाऊँगा इन द सेकेंड आवर। And it is also Uttam Kumar's death anniversary. It's the 46th death anniversary of the very famous Uttam Kumar, who was very popular in the Bengali films. लेकिन इन्होंने जो जो कुछ भी हिंदी फिल्में की उसमें कुछ अच्छे अच्छे गाने हैं। Sorry, I got a frog in my throat. I'm trying to get rid of it. लेकिन जब next गाना रखूँगा तब जाके थोड़ा सा पानी पी लूँगा। Anyway, so he passed away in on 24th of July 1980. I'm talking about Uttam Kumar, who was born in Calcutta and died in Kolkata. 3rd of September 1926 में जन्म हुआ था उनका। He died at the age of 53. Manoj Kumar ji lived a good life. Of course, last years mein he suffered a little bit. Lekin 87 was the age. Like I said, 7 Filmfare Awards. That was quite an achievement. And 1 National Award. Inko Padma Bhushan ka kitab diya gaya tha. Dada Saab Phalke Award bhi unko diya gaya tha. So, ये सब बातें जो आप सबको मालूम है वो ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें होती हैं जब मैं आपको बताऊँगा। जब मुझे एक ऑर्गेनाइज़र थे, एन इवेंट मैनेजर, एंड हिज नेम वाज रतन जी, रतन जैन, नॉट द वन फ्रॉम वीनस फिल्म्स, लेकिन रतन जैन एन इवेंट मैनेजर, इवेंट कंपनी चलाते थे। उन्होंने इंदौर में मेरे साथ शो किया था एक, और इंदौर में जब शो किया तो 4 दिन पहले शो के मैं मुझे ज़ुकाम हुआ था और मैं हटा ही नहीं पा रहा था। मैंने उनको कहा कि यार क्या करूं, मैं 4 दिन बाकी है और मुझे ज़ुकाम हुआ है, गाने का मुश्किल पड़ रहा है। उन्होंने कहा नॉट टू वरी, आई हैव बुक्ड मनोज कुमार जी एज़ वेल फॉर दैट पर्टिकुलर शो। एंड उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने पंजाबी में बातें की, दस मुंडिया की प्रॉब्लम है। मैं क्या डॉक्टर साहब कहूँ, मनोज जी कहूँ, मेरा कुछ भी बोल दे, आज तो तेरा डॉक्टर ही हूँ मैं। ही वॉज अ डॉक्टर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। इन्होंने चार छोटी छोटी बॉटल्स मुझे भेजी, सब में सफ़ेद गोलियाँ, मुझे लगा सब सेम गोलियाँ हैं पर अलग अलग थी। उन्होंने कहा कि तीन ये नंबर वन बॉटल से, तीन दोपहर की बोतल से, नंबर टू बॉटल से, ऐसे करके चार चार गोलियाँ मैंने खाई और चार दिन में आई वॉज परफेक्ट एंड आई वेंट देयर एंड ही नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर। मैंने कहा कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो, बोले मैं फ्लाइट से नहीं जाता, मैं ट्रेन से ही जाता हूँ। एंड जब पूर्व और पश्चिम वो फ्लाई नहीं कर रहे थे लंदन, सो ही केम बाय सी एंड पूरा यूनिट दो महीने के बाद, व्हेन ही रीच लंदन, दो महीने के बाद पूरा यूनिट आया पूरा पश्चिम का टू लंदन बाय एयर। लेकिन ही वुड नॉट ट्रेवल बाय एयर, ही वुड गो बाय ट्रेन और बाय शिप। सो दीज आर द लिटिल स्टोरीज दैट आई वॉज टोल्ड बाय पीपल लाइक हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ एज वेल। Wonderful person. I was happy I met him.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you today up to 128.3 Indian rupees. 128.3 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
4: Goodbye.
3: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Our line.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedia. With over 100 years of Ayurvedic legacy, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
9: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time, legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
10: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhundne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milayein 0208839880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. Ragasan.

0: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
1: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। केंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। केंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444।
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: Across London, this is Ballybrambat on Like a Gold.
6: Chhoti si mulli.

एंड दिस इज छोटी सी मुलाकात, और ये पिक्चराइज हुआ था ऑफ कोर्स उत्तम कुमार और वैजयंती माला पे। लेकिन हमारे रियल हीरो हीरोइन तो ग्रीस से अभी लौटे हैं, एंड दैट इज फ्रॉम रोड्स इन ग्रीस, एंड दैट्स राजीव पटेल एंड हिज वाइफ विद रेस्ट ऑफ द फैमिली, एंड दे हैड अ वंडरफुल ट्रिप एंड दे आर ड्राइविंग बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट टू गो टू मिल्टन कीन्स। सो वेलकम बैक टू यू कैन से यूके आफ्टर अ ब्यूटिफुल हॉलीडे इन द रोड्स। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई। जी हाँ, हम याद कर रहे हैं उत्तम कुमार जी को। उत्तम कुमार, he was born on 3rd of September 1926 and passed away on 24th July 1980 at a very young age of 83. अब हम आगे दूसरे गाने सुनेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। Like a Radio Network. दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। फिल्म अमानुष, किशोर दा ने गाया। इन्होंने शर्मिला टैगोर जी के साथ काफी फिल्में की थी। एंड अ मैन हु वाज नोन एज द महानायक ऑफ द बंगाली सिनेमा, ही डोमिनेटेड बंगाली सिनेमा फ्रॉम 1950s थ्रू 1970s। लेकिन इन्होंने हमें कुछ हिंदी फिल्में भी दी। ही वर्क्ड इन 211 फिल्म्स टिल हिज डेथ इन 1980। लेट्स रिमेंबर द ग्रेट मैन उत्तम कुमार, अरुण कुमार चट्टोपाध्याय असली नाम उनका।

एंडी वर्जी ने इतनी खूबसूरत लिरिक्स लिखी, संगीत दिया श्यामल मित्रा ने, फिल्म शक्ति सामंत की फिल्म अमानुष। वॉन्ट टू वेलकम विजय गुडोरी बैक टू यूके। ही हैड गॉन फॉर प्रेयर्स फॉर हिज सिस्टर्स, पहली पुण्यतिथि। ओम शांति। He's back from Mauritius, by the way.

0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साफो ट्रेवल at all protected.
4: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu Ayurved, that fits your life.
5: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
6: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
7: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB। कॉल 07795181001।
8: Dad,
9: what's wrong, beta?
8: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
8: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, balle balle. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
8: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
10: What would make dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
11: To I ये गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन,
10: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
11: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड। कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: चलो जाइए एक नवा सफर पर।
7: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार ए सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
8: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ,
7: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
8: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
7: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
9: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
10: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
11: This is Bally Brambat on Laika Gold.

0: फिल्म दो बदन एंड नेक्स्ट वन इज अ बर्थडे सॉन्ग.
1: नॉनस्टॉप क्लासिक्स लाइक अ गोल्ड.
0: हमारी प्यारी रमीला पटेल जी के देवर भरत जी का बर्थडे है.

0: जेम इन गोल्ड आफ्टरनून विद बाली ब्रम्बर्ट। बाली ब्रम्बर्ट जेम इन फूड्स, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात। अवेलेबल एट एशियन स्टोर्स नियर यू।
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
4: Goodbye.
3: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.

0: now visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323.
2: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
3: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure Herbal Care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
2: So where do we find something like that now?
3: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, Premium and made it the way our eldest used it.
4: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
5: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज रेमिनेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ, कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
6: London, good news! आपका फेवरेट iTag अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTag is open 24/7 with free parking. Full iTag at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
9: ईमेल

0: कठपुतली एंड पीपल थिंक इट्स हेमंत कुमार बट इट इज सुबीर सेन. यस, सुबीर सेन. शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र की लिरिक्स. वी आर डूइंग अ ट्रिब्यूट 92nd एनिवर्सरी ऑफ हिज.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to £1. US dollars 1.3328, Indian rupees 128.47, Pakistani rupees 370.1, Afghan Afghani

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
3: Mina Jewelers, best overall business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
4: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
7: Dreaming of paradise?
8: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
7: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
8: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
7: At all protected.
9: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: आजीवन चलने का नाम, और मैं भी अभी चलने का नाम कर रहा हूँ। एंड एंडी सैंडी शाह इज लाफिंग, सैंडी शाह इज हियर, एंड वी गॉट एनिका हू इज गोना टेक ओवर फॉर राज बत्तन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स, एंड सैंडी शाह विल टेक यू ऑन अ ड्राइव टाइम। Have a wonderful weekend, everybody. I'm off to Southampton for the Mela. Bye-bye.
1: Cool music for a super hot summertime. On Like a Gold.
0: गुस्सा फजूल है जिसने नहीं जीता कंपटीशन। मनोहर नेहरा जी, congratulations. Tickets will be emailed to you.

0: 24AX. Once you visit, you come again and again.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
2: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 02089072444।
3: ओके लॉरा,
4: फ्रॉम द टॉप।
5: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier. With personalized financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
1: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
6: Honslow, ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
7: Bikaner wala parampara bhi.
8: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
9: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
10: Oh yeah.
9: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
11: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Drive with Sandy Shah. Leica Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. Still got delays on the M4 onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. It's queuing on the A312 the partway southbound before the M4 Junction 3. A312 Church Road and Mandeville Road, heavy from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to Northolt Station. A40 Weston Avenue, still heavy westbound before you get to Gypsy Corner. The A406 North Circular Road, slowing in both directions at the Hanger Line Jarrie today to the Tube. And severe delays this evening on the Central Line. That's down to cancellations and an earlier signalling problem at White City. Also severe delays on the Metropolitan Line due to cancellations. That's your latest traffic and travel.
2: Leica Gold. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
5: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
4: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
5: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
4: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
5: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
4: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
5: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
10: Clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
11: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीज, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
12: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail. hotel, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
15: Hello, London. The wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
16: The Evening Show with Ashwini.
17: मैं हूं अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: बॉम्बे, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है। आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। अब इस फर्स्ट आवर का आगाज हमने किया था दो बड़े ही बेहतरीन गीतों के साथ। मेजर साहब से सुना है आपको सोनो सनम तेरी कसम, 1982 में फिल्म रिलीज हुई थी आशा भोसले और आदी बमन की आवाज में। जाने जाओ मेरी जाने जाओ। तो आप सबको पूछें कैसे हैं आप सब। अरे हाय क्या बात है, पूरा सप्ताह निकल गया फैंटास्टिक फ्राइडे के लिए। रेडी हैं आप लोग सब? खाना वाना खा लिया, कैलोरीज बर्न करने के लिए रेडी है? चलिए, अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारे धुरंधर आ रहे हैं, अपनी अपनी अटेंडेंस दर्ज करवा रहे हैं और फ्राइडे के दिन एक खुशनुमा माहौल सबके लिए हो जाता है अपने आप, है ना। तो आज का सवाल क्या होगा और क्या आज थ्योरी लाई हूँ? हाँ, शॉर्ट एंड स्वीट थ्योरी है। फ्राइडे है, मस्ती करेंगे, मस्ती भरी बातें होने वाली है, लेकिन सवाल हो सकता है ये सवाल थोड़ा गहरा लगे आप सबको, लेकिन हमेशा की तरह बड़ी ऑनेस्टी से आंसर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, आप वीक डेज में जीते हैं या आप वीकेंड पे सही मायने में जीते हैं? ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। वीक डेज में आप जिंदगी सही मायने में जीते हैं या वीक एंड पे सही मायने में जीते हैं? जिसके जो समझ में आए बता दो, लिख दो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपए एंड 30 पैसे। And don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 7:24, 7:24। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी। फैंटास्टिक फ्राइडे मनाएंगे आप और हम एंड मोहम्मद रफी की आवाज़ में। कश्मीर की गली से सुनाया था ये गीत। 60s वाले बच्चे कितने खुश हो गए, क्या दनादन मैसेजेस आए सबके। ओए होए होए क्या बात है। ओके तो लाइफ थियरी सुनेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी नेक्स्ट ट्रैक जो मैं सुना रही हूँ ना, एक तो क्या करो वॉल्यूम अप कर लो, और अगर पग घुंघरू बांध के नाचना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, आसपास के लोगों को बताना चाहते हैं कि लाइका गोल्ड पे अश्विनी का शो चल रहा है, बिंदास बताओ, वॉल्यूम अप करो।
2: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
3: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
2: सच?
3: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
4: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन
5: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
7: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुड, कॉल 01923-227274। बुक योर टेबल टुडे।
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
12: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
13: SonarTours.co.uk, 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call SonarTours on 0208-951-0111.
14: Leica Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB digital radio पर, Alexa पे बोलो play Leica Gold और online सुनो leicagold.com पे।
15: Feel good track. brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 36 मिनट्स पास 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अब इस टाइम तक जब पहुंच जाते हैं तो आपको कोई ना कोई थियरी जरूर मैं बताती हूँ जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है। आज की थियरी द ट्रेन थियरी। कुछ लोगों को आइडिया होगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ, जिनके लिए ये नया कंसेप्ट है, बात करते हैं इसके बारे में। तो ट्रेन हमेशा अपनी दो पटरियों पे चलती रहती है, एक डेस्टिनेशन से शुरू करती है और दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। अपने गंतव्य यानी जो अपना आखिरी डेस्टिनेशन है उसे चलने के लिए वो निरंतर अपने हर एक स्टेशन पे रुकते रहती है। उसमें कुछ यात्री चढ़ते हैं, कुछ यात्री उतरते हैं, कुछ शायद पूरी जर्नी करते हैं क्योंकि लास्ट स्टेशन ही शायद उनका मेन पॉइंट रहा होगा। ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है। हमारी ज़िंदगी भी ना चलने का नाम है। हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली, कलीग्स, ये सारी जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो पैसेंजर्स की तरह हैं और आप हैं एक ट्रेन जो जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। इस ज़िंदगी की इस पूरी जर्नी में कुछ लोग ऐड होंगे, कुछ लोग डिडक्ट होंगे, कुछ लोग आएंगे, मिलेंगे, आपको कुछ सिखाने के लिए आएंगे। देखिए, जिनके साथ आपकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, लाइक माइंडेड लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप खुशी पाते हैं। और कुछ लोगों के साथ में आपकी ज़िंदगी भर बनती नहीं है, क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लाइक माइंडेडनेस नहीं है। लेकिन कुछ लोग आएंगे और एक अजीब सा जादू करके आपकी लाइफ से निकल जाएंगे और कुछ शायद एंड तक रहने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं रह पाएंगे। यही तो ज़िंदगी है। एक्चुअली ज़िंदगी ना हमें अकेले जीनी पड़ती है। जितना जल्दी अगर ये कंसेप्ट हम समझ लेना उतना अच्छा हमारे लिए होता है, क्योंकि डिटैचमेंट मोड तभी वर्क करता है जब इस कंसेप्ट को आप समझ के और अपनी लाइफ में इनकलकेट करना शुरू कर दें। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, आप पेरेंट्स बने, अपने बच्चों को बड़ा किया, अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट की, आप किसी के बच्चे थे, अपने माता पिता की सेवा की सारी जो ड्यूटीज़ हैं आप करते चले गए, नौकरी, पैसा, रिलेशनशिप सब अनुभव किया, लेकिन गंतव्य तो आपको अकेला वहाँ तक पहुँचना है। तो ट्रेन थियरी ज़रा याद रखिएगा, जब

0: बहुत ज़्यादा आप अटैच हो जाए ना किसी से, और किसी इंसान के कुछ बोलने की वजह से, बिहेव करने की वजह से दुखी होते रहे, तो समझ लीजिएगा कि ट्रेन वाली थियोरी पे आपने अमल करना शुरू नहीं किया। आपकी अपनी थियोरी है, आपकी अपनी लाइफ है। बताइए कैसी लगी ट्रेन थियोरी।
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी। नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: The Evening Show with Ashwini. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
5: Search is changing.
6: Customers aren't just using Google anymore.
5: They're asking AI.
6: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
5: One business, one recommendation.
6: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
5: Will your business be the answer?
6: Or the one that got left behind?
5: The future of search has already started.
6: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
5: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: Packed for the trip? Gifts? Passport?
8: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
7: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
8: Simzy?
7: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
9: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
10: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.

0: यादों की बारात। ये है लाइका गोल्ड।
1: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1 you'll get 128.52 Indian rupee, 370.24 Pakistani rupee, 448.04 Sri Lankan rupee, 164.62 Bangladeshi taka, 87.81 Afghani, 172.58 Kenyan shilling, 1.33 US dollars, 63.18 Mauritian rupee.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download Lemfi now. T's and C's apply. LAIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £98.01 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: आप लोगों के मैसेजेस बैक टू बैक आ रहे हैं जिन्होंने अभी अभी भी ट्यून इन किया है. आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. फैंटास्टिक फ्राइडे मना रहे हैं आप और हम. तो हमने आपको यादों की बारात में सुनाया ये मेलोडियस ट्रैक पेइंग गेस्ट फिल्म से. 1957 में ये फिल्म रिलीज हुई थी किशोर कुमार की आवाज़ में. माना जनाम ने पुकारा नहीं. अब मैंने आप सबको पुकारा भी आते से आप सब आ भी गए और आते से मैंने पूछ लिया आप सबसे सवाल कि आप लोग वीकडेज में सही मायने में जीते हैं या वीकेंड में. तो बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने जवाब दिया. कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या सवाल है और कुछ लोग कहने लगे कि अच्छा कहाँ से ढूंढ के लाती हो ऐसे सवाल. क्या बात है, काफ़ी डेप्थ वाला सवाल है. बिल्कुल, सवाल जब भी आते हैं यहाँ पे उसका तात्पर्य ये होता है कि कहीं ना हमारे विचार हमें ही पता नहीं होते लेकिन जब कोई भी कोई सवाल आता है तो पता चलता है. तो बेसिकली वीकडेज में हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी बिल्डअप करते हैं क्योंकि एक रूटीन होता है रोज़ का. उठे, जिम गए, खाना बनाया, स्कूल गए, ऑफिस गए, रात में 10:30 जो भी आपका सोने का टाइम है, टीवी वगैरह देख के आप सो गए. ओके, तो ये जो एक है ना एक रूटीन है, आपने अपनी लाइफ बिल्डअप की है पूरे सप्ताह भर में. और वीकेंड में जो है अब इस लाइफ को आप कहीं ना कहीं फील करते हैं जो पूरे सप्ताह आपने मेहनत की है. कहीं ना कहीं वीकेंड पे आप रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि कोई टाइम स्लॉट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई ट्रेन नहीं कैच करनी, कहीं ऑफिस में जाके अपना कार्ड स्वाइप नहीं करना है. रिलैक्स होते हैं लेकिन साथ में एक जिंदा दिली से आप ज़िंदगी जीते भी हैं क्योंकि आपको सोशल गैदरिंग होती है, फ्रेंड्स के साथ में जाते हैं. लेकिन अब जो है लोगों ने पैंडेमिक के बाद से सिर्फ वीकेंड्स पे ही जीना है ऐसा नहीं है. वीकडेज में भी ट्यूसडे ऑनवर्ड्स पीपल हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग कि वीकडेज को भी थोड़ा अपने मन के मुताबिक जी सकें. तो लोग ऑफिस आज के बाद कभी कॉफ़ी चले जाते हैं, कभी डिनर पे बाहर चले गए, दोस्तों से मिल लिया, ठीक है भाई एक आधे दिन थोड़ा लेट्स हो जाएंगे लेकिन ये सोशल लाइफ और सोशलाइजिंग करना ज़रूरी है. कभी भजन कीर्तन करें चले गए, कहीं परफॉर्मेंस पे चले गए गानों के. तो दिस इज़ वॉट पीपल डू एंड दैट्स द रीज़न आई आस्क्ड यू आप सही मायने में कब जीते हैं.
1: अश्विनी, ब्राइटनिंग अप योर वीकनाइट्स.
4: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
1: Southall Travel. At all protected.
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: चलिए मिला लेते हैं घड़िया, देखते हैं टाइम कितना है, 8:16। वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। कहा था ना मैंने आप सबसे, सेकेंड आवर में कुछ नहीं करना है, बस वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और फिर उसके बाद में फुल ऑन इस आवर को एंजॉय करते चलिए। सेकेंड आवर में आप और हम मनाते हैं इमोशन ऑफ द डे विच इज फैंटास्टिक फ्राइडे। नेक्स्ट ट्रैक पक्का वाला प्रॉमिस, ये भी आपको मजा आएगा सुन के। ओके, तो इस गाने को किसने गाया है बताती हूँ, लेकिन उसके पहले काली तेरी चोटी है बाहर आने तक फिल्म से लिया था और उसके बाद किशोर कुमार की आवाज में एक हसीना थी। नाउ व्हाई आई प्लेड काली तेरी चोटी, बिकॉज लास्ट वीकेंड वी परफॉर्म, जो बॉलीवुड डांस क्लास में जाती हूँ, हम लोगों ने काली तेरी चोटी पे ही परफॉर्म किया था, तो सोचिए कि स्टूडियो में पक्का फिर से जो परफॉर्मेंस हुई है मजा आ गया भाई। नेक्स्ट ट्रैक आपको सुना रहे हैं सपना मुखर्जी की आवाज में जाबाज फिल्म से।
1: Feel good classics all day. Like a gold. Competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के लिए आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपी और 30 पैसे। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिलालेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:30। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। बैक टू बैक आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं, आप सबको सारे के सारे गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। जंगली फिल्म से सुनाया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत, कितना फास्ट ट्रैक था ना ये, ऐसा लगता है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो और ये वाला गीत लगाओ तो आपकी वॉक और जल्दी स्पीड में हो जाएगी। या हियर आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, आप लोग कह रहे हैं हाँ एक्चुअली ऐसा लगता है कि और फास्ट अगर वॉक करना है तो इस टाइप के गीत होने चाहिए। बिल्कुल, तो यही तो होता है कि फैंटास्टिक फ्राइडे में ऐसे सारे गीत आप सबके लिए प्ले किए जाते हैं जहाँ पे पूरे सप्ताह भर में आपने जितना भी काम काज किया है, फ्राइडे आके आप कहेंगे कि अरे यार आप थोड़ा नाचना गाना बनता है और डिस्को जाने का टाइम नहीं है, क्लब जाने का टाइम नहीं है, कोई नहीं है, बस अब फैंटास्टिक फ्राइडे के लिए ट्यून इन कर लीजिए लाइका गोल्ड रेडियो एवरी फ्राइडे एंड वीकडेज में तो आप सुनते ही सुनते हैं। नेक्स्ट ट्रैक किशोर कुमार की आवाज़ में ला रहे हैं आप सभी के लिए, याराना फिल्म से, और दोस्त अगर है ना तो उनके लिए ये गीत, फटाफट फ़ोन घुमा और कहो कि अरे वो अश्विनी के शो पे ना जो गाना बज रहा है वो तुम्हारे लिए, देखो तुम्हारे यार दोस्तों पे कितने फिदा हो जाएंगे।

0: The Evening Show with Ashwini.
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
2: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on लाइका गोल्ड and लाइका रेडियो मिडलैंड्स from 1 PM to 4 PM.

0: podcast update.
1: Podcast episode number 26 is out and you can listen and watch it. Reinvention and Entrepreneurship. Deep Raja speaks to Meenal Samri from Samaria Global Finance Limited and insight into banking sector. Like extra podcast available hai on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms. Like extra is here. चलिए मिला लेंगे घड़ियां और देखते हैं कि टाइम कितना हो रहा है। फिर से वही टाइम इसलिए याद दिला दी, कभी कभी ऐसा होता ना कि बस अश्विनी का शो शुरू है तो हम बैठ गए, हम याद नहीं हमें और दूसरे काम भी करने हैं, पर हो जाता है कभी कभी, कुछ कभी बच्चों को कहीं ट्यूशन छोड़ दिया है, वहां से पिकअप करना है और भी कुछ काम है, तो जरूर आप घड़ी भी देख लिया कीजिए।

0: 39 मिनट्स पास्ट 8 मोहम्मद रफी की आवाज में जानवर फिल्म से सुनाया था आप सभी को ये गीत। और अगर हम कुछ प्यारी गुड न्यूज के बारे में बात करें तो कैसा है, थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में पता नहीं वर्ल्ड बातें कर रहा है कि नहीं, लेकिन हम इस शो पे जरूर बात करते हैं। एंड नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रही हूँ इस इमोशन ऑफ द डे, फैंटास्टिक फ्राइडे है, आशा भोसले की आवाज में अगर ये गीत नहीं सुनाया तो क्या हमने एंजॉय किया। कारवा फिल्म से आशा भोसले और आली बमन की आवाज में नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू ऑन द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी, travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02239635757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: South Hall, Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
7: Bikaner wala parampara bhi.
8: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
9: Minar Jewelers Best Independent Retailer 2026. Come and find out why. Best jewelry for the bride and groom. Phone 0208-767-7547.
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja discusses reinvention and entrepreneurship with Meenal from Samaria Global Finance Limited.
11: Nowadays, it's getting more and more challenging because the banks, all the bigger financial institutions, all the lenders, all the investors, they have so many people approaching them on a day-to-day basis. So they need someone who can actually hit the ground running for them.
10: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.
1: Emotion of the day.
12: Emotion.

0: Emotion of the day.
1: Emotion of the day.
0: This is Like a Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1, you'll get 128.46 Indian rupee, 369.99 Pakistani rupee, 447.95 Sri Lankan rupee, 164.56 Bangladeshi taka, 87.79 Afghan Afghani, 172.61 Kenyan shilling, 1.33 US dollars and 63.16 Mauritian rupee.
3: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £98.01 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: थोड़ी वियर्ड और फनी न्यूज के बारे में अगर बात करें तो ये एक न्यूज मैंने पढ़ी जो मुझे वियर्ड लगी, थोड़ी सी इनह्यूमन लगी और फिर थोड़ा सा मजाकिया भी लगी। अभी क्या एक्चुअली हुआ रहेगा कि मैं ऐसे कह रही हूँ, तो इसका रीज़न ऐसा है कि एक महिला है जिन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला है और उसमें कहा है कि भाई मेरे हस्बैंड जो हैं ये जब रोज़ ऑफिस जाते हैं तो ये रिमोट जो है एसी का वो लेके चले जाते हैं। अब ये है इंडिया में, ये महिला जो है इनका नाम है रीमा, इन्होंने ये पोस्ट किया है और इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा गर्मी, एक तो 45 डिग्री टेम्परेचर है, मेरे हस्बैंड रोज़ रिमोट लेके चले जाते हैं एसी का ताकि हम एसी यूज़ ना कर पाए। एंड शी इज़ लाइक आई एम रियली डन विद दिस गर्मी एंड दिस इज़ सो वियर्ड, माई हस्बैंड टेक्स द रिमोट एवरी डे। सो अब कुछ लोगों ने इस पे हंसी तो उड़ाई है उस इंसान की। किसी का कहना है बिजली बचाने का बहुत अच्छा तरीका, किसने कहा कि भाई फिर एसी लगाया क्यों, और कई यूजर्स ने कहा कि अरे बहन अगर वो रिमोट नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको ऐप बताते हैं, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और एसी चलाइए। ये भाई साहब जो है बिल बचाने के मामले में ये सारी तरकीबें यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी तरकीब यूज़ कर लो और अच्छे से ठंडी हवा लो, जब आपके हस्बैंड घर पे आए उसके पहले आप एसी बंद कर लो ताकि उन्हें पता चले कि भाई ये महिला जो है ये वाला एसी नहीं, मतलब एसी का ये रिमोट नहीं तो दूसरा रिमोट भी ये कर सकती है यूज़ और एसी चला सकती है। वेल आई रिमेंबर माई चाचा जी वॉज दिस वे कि उनके यहाँ पे जब मेहमान आते थे तो वो जाके घर का जो मेन फ्यूज़ है ना वहाँ पे पता नहीं क्या ही गोलमाल करके आते थे, पूरी घर की लाइट चली जाती थी एंड मेहमान जैसे ही घर से बाहर निकले लाइट वापस आ जाती थी, यू नो, तो घर में पूरा अच्छे से सारे लाइट चल रहे हैं, फैन चल रहे हैं। आई फील टू अंडरस्टैंड वाई पीपल डू दिस, यार मतलब क्या उनकी मंशा रहती है ये सब करने में। हंसने लायक चीज़ है लेकिन कहीं ना कहीं ये इनह्यूमन भी लगता है कि आपके जान पहचान में ऐसे कुछ स्टिंजी कंजूस लोग हैं जो अपने बिजली के बिल का पैसा बचाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं।
0: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
4: The evening show with Ashwini.
5: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
6: एक्सपीरियंस an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit SkylordCruiseAndHolidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
10: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
9: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
11: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
4: द इवनिंग शो विद अश्विनी
0: London's biggest classics all day. This is Leica Gold.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। बड़े ही मस्त गीत, पहला गीत था सत्या फिल्म से, आशा भोसले एंड सुरेश वाड़कर की आवाज में, उसके बाद में मनहर उदास साधना सरगम की आवाज में राम लखन से सुनाया आप सभी को ये गीत। एंड में तेरा नाम लिया तुझे याद किया, आई स्टिल रिमेम्बर दिस सॉन्ग यूज टू बी इन चित्रहार। एंड अनिल कपूर और उनकी दोस्त मंडली जो है, कैसे सिर पे दुपट्टा डाल के एंड दे सिंग इन दिस फीमेल वॉइस, तो या वो थोड़ा सा फनी लगता था उस टाइम पे। एनीवेज, तो थर्ड आवर में अब आज क्या क्या बातें होने वाली, गज़ल या कवाली? बहुत से लोग कह रहे हैं कि कवाली सुनाओगी आप, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि गज़ल सुनाओगी आप, और किसी ने कहा कि कोई पंजाबी गीत सुना दीजिए। ओके चलिए, फ्राइडे है तो बिल्कुल मस्ती मज़ा इंटरेक्शन यहाँ पे चल रहा है। तो आज 24th of July किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, कुछ स्पेशल हुआ रहेगा, फ्राइडे है तो वैसे ही स्पेशल है, और अश्विनी का शो सुन रहे हैं तो स्पेशल ही स्पेशल है ना। लेकिन आज और भी कुछ मनाया जाता है, नेशनल ड्राइव थ्रू डे, नेशनल कजिन्स डे, इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे, साथ में पायनियर डे, नेशनल एमिलिया एयरहार्ट डे, नेशनल टेल एन ओल्ड जोक डे। जोक्स सच में लोग सुनाते हैं क्या? नहीं ना, हमने पिछली बार शायद बात की थी कि स्टैंड अप कॉमेडी जाके अटेंड करते हैं लोग, एक दूसरे को जोक सुनाना वैसे तो कम ही हो गया। नेशनल कजिन्स डे, यस, सो नेशनल कजिन्स डे इज सच अ फैंटास्टिक डे टू सेलिब्रेट ऑल द कजिन्स जो आपकी लाइफ में आपके साथ हैं आपके बचपन से, और जो आपके साथ रहते हैं आप बूढ़े होते हैं या टिल योर एंड। कुछ कजिन्स ऐसे होते हैं कि कहने के लिए सिर्फ कजिन्स होते हैं, लेकिन दे आर लाइक योर बेस्टीज। सो आई हैव वन ऑफ माई कजिन्स and she is my bestie right from the childhood, and you know it's a blessing if you have these kind of people in your life। to agar aapke koi cousin hai jo bachpan mein aapke bahut close hua karte the lekin ab aapko lagta hai ki distance hai, lekin yaar bachpan to bachpan tha na, kitni meethi yaadein hoti hai। अब तो खैर अगर वो कहीं एशियन कंट्री में है तो वहाँ पे तो रात हो गई, कल सुबह उठ के फ़ोन लगा लो और बता दो उनको कि कितना मिस किया आपने उनको इतने साल। रिश्ते ना बहुत खूबसूरत होते हैं, जिनके पास रिश्ते हैं ना वो लकी हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं दुनिया जहाँ में जो रिश्तों को ढूंढ रहे हैं।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपी एंड 30 पैसे। Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and

0: जी, अगर किसी को वादा किया है तो वादा जरूर निभाइएगा। किशोर कुमार की आवाज में दुश्मन फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। अच्छा, गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में वर्ल्ड बातें कर रहा है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इस शो पे जरूर बातें होती हैं। सो अ मिडिल स्कूल स्टार्टेड अ ब्रेकफास्ट प्रोग्राम बट मेनी डैड्स कुडंट मेक इट एंड सेवरल स्टूडेंट्स डिडंट हैव फादर फिगर्स। द स्कूल पोस्टेड अ फेसबुक रिक्वेस्ट फॉर 50 वॉलंटियर फादर्स। 600 fathers from all backgrounds showed up. Oh my God, that must have been fantastic. A lady goes to supermarket to read books standing all the time. When the manager noticed this, he put a bench for her to sit while reading. Humanity hai na, abhi bhi hai. एक लेडी ने देखा कि एक ट्रेन स्टेशन पे एक आदमी अपनी टाई लगाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि जरा इन्हें टाई तो पहना दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस और छोटी छोटी हेल्प। देखिए, किसी की भलाई करनी है, काइंडनेस, इसके लिए बहुत बड़े एफर्ट्स नहीं लगते, बहुत छोटे से एफर्ट। अगर लेन चेंज कर रहे हैं और कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, जाने दीजिए, हो सकता है शायद उन्हें आपसे ज़्यादा इमरजेंसी हो और शायद आगे डाइवर्जन ना लेते हैं, है ना। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी
1: काइंडनेस। At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Dale, Dell's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: ये है लाइका गोल्ड।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
0: द इवनिंग शो विद अश्विनी, travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies. To trade, visit heraldplastic.com.
3: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
4: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
5: 4 beers, please, garçon!
4: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: Like a Gold, the perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.48 Indian rupee, 369.93 Pakistani rupee, 447.75 Sri Lankan rupee, 164.51 Bangladeshi taka, 87.75 Afghan Afghani, 172.54 Kenyan shilling, 1.33 US dollars, 63.13 Mauritian rupee.
2: Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.98 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 44 मिनट्स पास्ट 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। अब 44 मिनट्स पास्ट 9 मतलब इस आवर के आखिरी दो गीत आपको सुनाने वाली हूँ डिस्को डांसर से जिमी जिमी विच इज संग बाय पार्वती खान। एंड लास्ट ट्रैक क्या होने वाला है, गजलिया कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, तो आज मैं सुनाने वाली हूँ कव्वाली बरसात की रात से मन्ना डे एंड मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये इश्क इश्क है, ज़रूर सुनिएगा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कव्वालीज और क्लासिकल टच वाली जब कव्वालीज होती है ना तो आहा मतलब उफ ऐसा माहौल बन जाता है। ओके, गोल्ड नाइट ओवरनाइट सर्विसेज जरूर सुनिएगा लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। कल हमारे दीप राजा आएंगे अपने मस्ती भरे अंदाज में, तो उनका साथ दीजिएगा। वीकेंड क्रू रेडी है आप सबको एंटरटेन करने के लिए। एंड टाइम फॉर मी टू से टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। मतलब अभी ये वीक खत्म हुआ है तो मंडे से फिर मिलेंगे, फिर मस्ती मजा इंटरेक्शन गपशप होगा यहीं पे द इवनिंग शो विद अश्विनी में ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। वीकेंड पे अपना ख्याल रखिए, कल ज़्यादा धूप है तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, सनस्क्रीन लगाइए। बाहर जाने की ज़रूरत ना हो तो मत जाओ, घर में बैठो ठंडी ठंडी हवा खाओ। एंड जिंदगी ब्यूटीफुल है, कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, प्यार दो प्यार लो। ऑन दैट नोट आई हैव टू से बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
0: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
3: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
4: Dad.
5: What's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027 1.
8: लोकेशन
9: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location.
8: High appreciation
9: in Dubai.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
2: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Like a Gold.
11: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: 020-8150-2025 or visit miraboiler.com. T's and C's apply.
1: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, four pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
2: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
3: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
1: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
2: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
4: Feel the fun. Play Ojo.
5: 18 plus gamble aware.
6: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
8: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।